0: देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: நேரம் சரியா 11:11 ஆகுது. FM ரெயின்போ 101.4 கேட்டிருக்கீங்க. இந்த நிகழ்ச்சி திரைகானம், நான் உங்கள் பூர்ணிமா. நிகழ்ச்சியில் அடுத்த பாடல் மலேசியா வாசுதேவன் மற்றும் எஸ் ஜானகி அவர்கள் குரல்ல, கங்கை அமரன் அவர்கள் வரிகள்ல, இளையராஜா இசையில பாடல் வந்துகிட்டே இருக்கு. வெற்றி விழா திரைப்படத்திலிருந்து இது FM ரெயின்போ 101.4. இங்க எல்லாமே சிமிதுளு.

0: वेलकम बैक। और देखिए हमारे साथ इस समय कौन है, देखते हैं हम। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हमारे साथ कौन है, अपना नाम बताओगे दोस्त?
1: मैं हूँ निकिता पारेकर, पुणे से।
0: निकिता, स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर। कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: बस मैं भी बढ़िया हूँ, और आपसे बात करके और बढ़िया हो गए। अच्छा लगता है जब हम अपने लिसनर से बात करते हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: உங்கள் எஃப்எம் ரெயின்போவில் தினந்தோறும் காலை 7:30 சைபால் வழங்கும் இன்று ஒரு தகவல். இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் சைபால்.
2: ரெயின்போ மெலடிஸ் இதமாய் இசையாய்.

0: बंदा
1: पप्पा मुक्तम बंदा
0: अम्मा मुक्तम संधा ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला